परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे उमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथों जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सादर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तों फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैं शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां कि कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथ ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथ ही सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾਂ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁਖਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਂ? ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
मुहि दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसे दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे टुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई। कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदो मैं दुआ कीती, जदो इल्तजा कीती, जदो खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घरां दे अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गए, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखणा ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उत्थे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों ने? वो पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने निमंत्रण दिता है ते इथे अगे आ जा, तुसी तां कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मल लिया है, तेरी दहलीज मल ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के ही छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता ढीठ होके नहीं मंगता, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल ढीठ होके नहीं मंगता, ढीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना। जब तक कोई ढीठ होके नहीं मंगता उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आढ़ीठ धर्म आढ़ीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहिगुरु तूं भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आढ़ीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करण कारण समर्थ होकर दई है। आढ़ीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासू दा अत ढीठ निश्चय ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदो तक कई बारी इनू शक्कां शकूकां दा शुभात दा ही शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी अपनी तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चय धार लिया मोहे

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा।

अरदास करो सचे पातशाह जी कृपा करण मेर करण। कोई समा अखा के आया होगा गुरु अमरदास जी जो ताई निकलिया होगा जगत जलंदा।

0: मत को परम बुले संसार निगुरे का है नाओ बुरा।
1: जदों गुरु अमरदास पातशाह जी नूं ए एहसास होया, एहसास दिलवाया उस पंडित ने जो कि इन्हां दे नाल तुर रहा सी, जा रहा सी। इन्हां दा नां उस वेले अमरू है, अमरू करके लोकी जानते हैं। यह हरिद्वार की यात्रा ते जांदे हन हर एक साल, ते साध संगत एक पंडित जो इन्हां दे नाल तुर रहे रस्ते दे विच बैठे, ते पंडित ने कहा भाव कि जदों ये प्रसाद देन लगे अमरू जी, ते उसने पूछ लिया तुहाडा गुरु कौन है। ते अमरू जी ने आख्या भाई मेरा तो गुरु कोई है ही नहीं। ते पंडित ने साफ इनकार कर दिता, कहा नहीं तेरे हाथ का प्रसाद नहीं लेना, तेरा तो कोई गुरु ही नहीं, तू हाले तक गुरु नहीं धारण किया, ये तेरी यात्रावां असफल हन, बेकार हन, क्योंकि तेरा गुरु कोई नहीं है। मैं तेरे हाथ का प्रसाद नहीं लेना, जिन्ना देर तक मैं तेरे संग रहा, तेरे नाल रहा, ये मेरा टाइम भी व्यर्थ गया, क्योंकि मैं निगुरे पुरुष दे नाल रहे। ते साध संगत जदों मन दे विच ए गल आई, ते अमरू जी सोचन लगी कोई गुरु धारण करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिन गुरु मुकत ना पाईए पाई, बिना गुरु तो मुक्ति ही नहीं। ते फिर ये यात्रावां ये सब असफल होनगियां, बेकार होनगियां, क्योंकि गुरु कोई नहीं। ते गुरबाणी सानू बार बार समझाउंदी है साडा तां गुरु है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जिस दे लड़ कलगीधर पातशाह ने सानू लाया। ते गुरु होंदियां ते फिर असी संग ना करिए, गुरु होंदियां हजूर विच ना बैठिए, ए तां होर भी त्रिग ए अजीब आ, ए तां फिर उस तो भी ज्यादा, क्योंकि जिन्हां दा गुरु है ही नहीं उन्हां दी गल कोई नहीं, जिन्हां दा गुरु है ते फिर गुरु दी हजूरी विच पहुंचन तां ही है ना। जे घर बैठिया ही सब कुछ मन दे विच सोच लिया, इत्थे ही मत्था टेक दिंदे, कई बंदे कह दिंदे इत्थों ही मत्था टेक दिंदे जी, सी इह गल नहीं। असीं पड़भागे हां गुरपुरा जिन सिमरिया सही पए निहार, गुरपुरा पेटियो वडभागी मने पया परगासा। आओ निवरी पुरुष दा ए हाल है, ते आओ वडभागियो असी सारे गुरु वाले हां, काश ए गुरु कृपा करदा रवे साडे ते, विसरना ही दातार अपना नाम देव, नाम दी बख्शिश करदा रवे, सदा सानू अपने संग लाए रखे, लड़ राए रखे।

खोल खजाना गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया सानू इस अनमोल खजाने दी पहचान हो जावे। वाहिगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। साध संगत जी जपजी साहब दी इतनी महानता गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है अपना रूप बख्शिया है एक बारी प्यार ना लाखो सतनाम। सात संग जी जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई अपना रूप बख्शिया कुछ बचन भी कीते

समुंदर दे किनारे एक जोगी राज अपनी अखां बंद करके बैठा है। सामने एदे एक लोहे दी संदूकड़ी पई है। ठंडी ठंडी हवा वाग रही है। तारे चढ़े हुए ने। शहर दे विचों दो प्रेमी आए इस जोगी राज दे सामने मत्था टेकिया। सामने पई संदूकड़ी विच कुछ माया पाई। थोड़ी दूर हट के बैठ गए ने। थोड़ी देर बाद दो चार होर प्रेमी आए ने। उन्हां भी संदूकड़ी विच पैसे पाए मत्था टेकिया। ओ भी बैठ गए ने। ज्यों ज्यों पौ फुटाला हुंदा गया तीन चार सौ दे करीब लोकां दी भीड़ इस जोगी राज दे सामने लग गई। सारे लोग हाथ जोड़ के बैठे हन। कदों ए जोगी राज अखां खोले सानू कोई गल सुनावे। इन्ने नूं इन्हां बैठियां लोकां नूं इंज लग्गिया जिवें हवा दे विच कोई सुगंधी खुशबू जिही फैल गई। दो मुसाफिर तुरदे तुरदे आए ने जिन्हां दे चेहरे ते बड़ी मिठास है एक खिच है। ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਲਕ ਜਾਪਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ। ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ए जोगी राज किवें मन टिका के बैठा है किवें एदा मन

मुस्कुरा के अपने नौकर नूं हां जोगी राज जुड़िया होया पर परमेश्वर दे नाल नहीं अपनी लोहे दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा लोहे दी संदूखड़ी नाल।

गुरु साहबा ने उस वक्त ए शब्द उचारिया, काल नाही जोग नाही नाही सत का डब, थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग। कोई जोग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच नहीं, इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट होंदी जा रही है, ए सारा संसार डुबदा जा रहा है। कल मैं राम नाम सार ए भाई पखंड छड़ दियो, कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने सहायता।

साहब जी कहन लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण वास्ते जदके तेनु ए पता नहीं तेरी संदूकड़ी किथे है ते गुरु साहब ने कहा जो अपनी बाणी विच बयान कीता है साहब जी उस जोगी राज नु की समझा।

पाछे कछू ना सूझे। तेनू अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई होई है। पिछा देखिया इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नू क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनू संदूकड़ी।

भगत कबीर साबदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया। तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया। एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण ए बड़ा खुश होया, क्योंकि नारायण परमेश्वर नु कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान दा एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बनियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच

जिन्हां ने गज साढ़े तै तै धोतियां साढ़े तीन दिन गज दियां चिट्टियां धोतियां बनियां ने तेरे पाए ने तग ते तेरे तेरे जनेऊ काले च पाए हुए ने।

गली जिना जप मालिया जिना ने गला विच माला पाईया ने लोटे हाथ नी बग ते हथां दे विच चिटे चमक दे।

बसुदा खोद करे दोए चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाए।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आ

इस पेखी संत दे कोल ए तनी आदमी बैठ गए, गल्ला बातां करदा रहा। बेड़ी आई, ओ तनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव जी दूर बैठे सन, उन्होंने देख लिया वो सेठ दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछिया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वांसली

अपना वड्डा पण दसण वास्ते अपने आसन तो उठे। उन्हां लोकां नूं कहण लगा, नामदेव नूं मारो ना, जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही, उधर एक हवा दा बुला आया, उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वासली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोका ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के कुट

है भाई, काहे को कीजे ध्यान जपना। जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

तितर दा रंग बड़ा सोहना हुंदा है। सिंह च भोजन जोड़ नर जाने भगत नामदेव जी कहंदे ने कि जेड़े लोग जेड़े इंसान तितर दे बारे जानदे ने कि रंग बड़ा सोहना पर खांदा की ए कीड़े ते मकौड़े ऐसे ही ठग दियो बखाने। इसी तरह इन्हां संतां नूं समझो जिन्हां ने चिट्टे चिट्टे ते लम्मे लम्मे चोले बनाए ने हत्थां विच माला फड़ी ते कहंदे ने असीं घर बार छड्डे आ असीं त्यागी पर इन्हां संतां नूं उस तित्तर दी तरह समझो जिहड़ा सोहना ते बड़ा है पर खांदा कीड़े मकौड़े। इसे तरह ए संत चोले तां लम्मे लम्मे पाए ने चिट्टे रंग दे पर अंदरों ए ठग ने उस तित्तर दी तरह

मेरे गलों ये झगड़ा ला ले है भाई मैं पखंड नहीं करदा उस परमेश्वर दा नाम जपया ओदे नाल मिल गया है भाई तुसी भी मन करके ओदा नाम जपो तुसी भी इन पखंडा तू

शाम पे भाई लालो कुछ साथियों दे नाल गुरु साहिबां नूं मत्था टेक के हाथ जोड़ के बैठ गया। कहन लगा पातशाह दुनिया ते इन्ने पाप वध गए ने कि जिन्हां बारे बयान करना बड़ा औखा है, खास करके इस एमनाबाद विच तां इन्ने

जिन्हों पाई जिन्हें ए दुनिया पैदा कीती है, ओ ते एक जगह बैठा होया अपनी खेड प्या देखता है। पर एक गल है, ओदा न्याओ सच्चा है, आप भी ओ सच्चा है, ते ओदा न्याओ भी सच्चा है।

शेर शाह सूरी नू कहे कि एक ओ भी समा आवेगा कि पहला बाबर दा कब्जा हिंदुस्तान ते होवेगा। ओ बाबर नू हिंदुस्तान दे विचों

जेड़ा अगे आया उन्हों खत्म कर दिता। बच्चियां तो लैके बुजुर्गां तक किसे नु भी कतल करन तो छड़िया नहीं। जदो मीह पैंदा ते नालियां पानी दियां भर के चलदियां ने। इन्नी कतलेआम कीती के इमनाबाद गलियां जिहड़ियां सन खून दियां भर भर के चलियां। हुण बाबर ने अपनी फतेह दा डंका वजाया। जेड़े बचे उन्हां नूं कैदी बना के वापस तुर पिया। जदों ये हमला होया तां गुरु नानक साहब इमनाबाद दे बाहर

0: फिर शुक्र कीता। आदेश कहंदे ने मथा टेकना, ऐ बाबा ऐ अकाल पुरख मैं तेनु नमस्कार करदा, क्यों कि तेरा किसे ने अंत नहीं पाया, तू कदी सुख देना है कदी दुख देना है।
1: आदेश बाबा आदेश,

0: मंडप महला कहां सुबंक सराई।
1: ओ वड़े वड़े घर, वड़े वड़े महल, किथे वड़िया वड़िया सर।

इस माया दे करके सारी लड़ाई हुई, पर हैरानगी की गल ए कि ए माया पापा तो बगैर कठी नहीं होंदी ते मर गया दे नाल नाल भी नहीं जांदी। जदू आदमी मर जावे ते माया उदे नाल नहीं जांदी, पर पापा तो बगैर

पर ए अकाल पुरख सब कुछ ते तू आप करना है, मैं किनू आके सुनावा ए दुख ते सुख तेरे भाणे विच, किथे जाके रोईए क्योंकि सब कुछ तेरे हुक्म विच है, तू जो चाहवे ओही हुंदा है, किदे कोल जाके अपना दुख दस।

गोयली चराण वाला कि जिस तरह कोई लड़का गावां मज्जां चराण वास्ते लै जांदा है, सारा दिन चरांदा है ते शाम नूं उन्हां गावां नूं लै के वापस आ जांदा है। इस तरह ऐ इंसान तू भी इस संसार विच आया है, तेरे जीवन का दिन जदों मुक जाएगा

वो क्यों मर गए? ओनू नहीं सी मरना चाहिदा। जेड़ा मर गया है ना ओनू तुसी रोंदे हो। साहब जी कहंदे ने ओने तो मरना ही सी। जिनू तुसी रोंदे हो अपना फिक्र करो कि कल नू तुसी मरोगे तो तुहानू कौन रोवेगा।

जो मर्जी इकट्ठा करी जाओ, मैं तुहानू नहीं रोकदा। इंसान मरिया वेड़े विच पिया, सारी उम्र पालना कीती, घर बनाया, तेतियां पुत्र कहंदे ने जेबां खोल लो, बटुआ तां नहीं, घर दियां चाबियां तां नहीं, हाथ देख लो घड़ी तां नहीं बन्नी, सोने दा कड़ा तां नहीं पाया, कोई अंगूठी तां नहीं पाई, जे है तां सब कुछ ले ले, जे चंगा सूट पाया है तां सूट भी ला लैंदे, घर दा मालिक, सारी उम्र धियां पुत्रां वास्ते कमाया, अज उन्हां धियां पुत्रां ने सब कुछ ला लिया, एक कफन पा के लैके तुर पए, शमशान घाट लै गए, जे कफन चंगा होवे ते कई वारी साड़न वाला उत्तू ला लैंदा, माड़ा कफन रह गया, अग लाई ते अगन देवता कहंदा भाई आया ते नंगा सी, कफन किथे लै चले, कफन भी वो सांभ लैंदा है, शरीर भी नाल नहीं जांदा। ते साहब जी कहंदे ने भाई जे मरन वाला अपने नाल कुछ लै गया तां तुसी भी पाप करी जाओ, माया कट्टी करो, मैं तुहानू नहीं रोकदा।

चंगे गुणा का व्यापार करो, अवगुण छड़ दियो, गुणा नू संभालो, एहो जे काम करो कि उस दरगाह विच तुहानू इज्जत मिले।

अपने ते दोष नहीं लिया। टेमना बाद दे लोक बड़े पापी सन, उन्हां लोकां नूं सजा देनी सी, पर तू जम कर मुगल चढ़ाया। मुगलां नूं जमा दा रूप दे के एमनाबाद ते भेज दिता, ते उन्हां ने इत्थे दे लोकां नूं कतल कर करके गलियां दे विच रुला दिता।

पर फिर ताना मारे फिर शुक्र विच आ गए। ऐ करता क्या काल पुरख तू सारिया दा है, पर एक गल है जे सकता सकता कहंदे नी तगड़े आदमी नू, जे तगड़ा आदमी तगड़े नू मारे ता मन विच रोस नहीं हुंदा। पर ए मुकाबला बराबर नहीं सी, बाबर दे कोल बंदूकां सन ते इमनाबाद वालियां कोल सिर्फ तलवारां ते भाले ते तीर कमान सन। ए कोई

कभी मैं बहुत वड्डा वा, मेरे वर्गा कोई बहादुर नहीं, मेरे वर्गा कोई अमीर नहीं। ते गुरु साहब जी कहंदे ने अकाल पुरख खसमी नदरी कीड़ा आवे, ओ इंसान तेरी निगाह विच एक कीड़ा है के कीड़ियां दी तरह ओ दाने पिया चुगदा है। कई जन्म लैके कई बारी मर के इंसान जिहड़ा है फिर भी तेरे अंत नूं नहीं पा सकिया। खसमी नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे।

इस शब्द का उपदेश किया। फिर बाबर ने बेनती की, मेरे ते कृपा करो, मेरा राज अटल रवे। गुरु साहब ने कहा, बाबर किसी का राज अटल नहीं रहा, पर हां जे सच ते चलने तुहाडा राज रहेगा। गुरु साहबां दे आशीर्वाद दे नाल इन्हां दा राज हिंदुस्तान ते शुरू होया। ज्यों ज्यों बाबर दी वंश ने सच ते न्याय ते प्रजा की देखभाल की, इन्हां दा राज चलदा रहा। जदों इन्हां ने जुलम शुरू किते ते औरंगजेब दे वेले जिन्हें जुल्मां दी अत चुकी, इन्हां दा राज खत्म हो गया। गुरु नानक साहब तो राज शुरू होया ते कलगी धर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह दे वेले इन्हां मुगलां दा राज जिहड़ा सी इह फिर खत्म होना शुरू हो गया। सच ते चले राज रहा, सच तो डिगे

कौडी बदले त्यागे रतन छोड़ जाए वाहू का जतन सो संचो जो हो छी बात माया मोया टेडो जात अभागे तै लाज नाई सुख सागर पूरन परमेसर हर ना चेत्यो मन माही अमृत कौड़ा बिखिया बीठी साकत की बिद नैनो डीठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना ओ माया कारण सदही झूरे मन मुख कवै न उस्तत करे निर्भव निरंकार